0: और मैं पाचू
1: इटी यूनो और रेडियो
2: यो रिकी टर्न मी अप अ लिटिल बिट यो रिकी टर्न मी अप अ लिटिल बिट